साल हो गए हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त लोग उसे एक फन समर एंटरटेनर समझ रहे थे। ग्लॉसी स्टार्स थे, ब्यूटीफुल लोकेशंस, द धर्मा स्टाइल रोमांस। लेकिन आज समझ आता है कि फिल्म एक्चुअली थी किस बारे में। द फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, द अर्ज टू चेज योर ड्रीम्स, अपने सपनों का पीछा करो, और वो कॉन्स्टेंट बैटल बिटवीन एम्बिशन एंड बिलोंगिंग। अयान मुखर्जी ने उस जेनरेशन की कंफ्यूजन को बॉलीवुड स्केल पे कैप्चर कर लिया। और फिर आता है उस फिल्म का म्यूजिक।

0: ये सिर्फ ट्रैवल सॉन्ग नहीं रहा, ये गाने लोगों की मेमोरीज बन गए। लेकिन अगर उस पूरी एल्बम में एक थीम थी, एक स्पिरिट था, एक सोल था, तो वो था कबीरा। वो गाना जो आप सेलिब्रेशन में नहीं सुनते, आप उसे तब सुनते हो जब जिंदगी थोड़ी सी लाउड हो जाती है और आपको थोड़ी सी खामोशी चाहिए। फिल्म में उसके दो वर्जन थे, लेकिन माय रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक इज द वन दैट इज क्लोज टू एवरीवन्स हार्ट। अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाज में दिस इज द रीप्राइज वर्जन ऑफ कबीरा।
1: टॉप 20 रीवाइंड।

0: व्याह करवा दो जी। एंड ऑनेस्टली है जवानी तो इश्क होना है, थिएटर्स में आए हुए ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, तो एक हफ्ते के बाद ही पता चलेगा कि ऑडियंस ने फिल्म को कितना एक्सेप्ट किया है, कितना अपनाया है। लेकिन इस हफ्ते एक और फिल्म ने मेरा ध्यान खींच लिया, कॉकटेल 2। इसका ट्रेलर आ गया ऑन यूट्यूब। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ बज अराउंड द फिल्म और मैंने भी सोचा यार कि जो ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ जरा देख लूं, जानू तो सही शाहिद, रश्मिका और कृति आखिर अपनी फिल्म के बारे में क्या कह रहे हैं। और वो वीडियो देखकर मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई। ट्रेलर हिंदी में, फिल्म हिंदी में, गाने हिंदी में, लेकिन स्टेज पर हुई बातचीत पूरी अंग्रेजी में। और ये बात सिर्फ कॉकटेल 2 की नहीं है, आजकल किसी भी बड़ी फिल्म लॉन्च को देख लीजिए, कभी कभी लगता है फिल्म का प्रमोशन कम और MBA में वाइवा ज्यादा चल रहा है। अब ये हिंदी वर्सेस इंग्लिश वाली डिबेट नहीं है बॉस, वो बोरिंग है। ऑडियंस इंग्लिश समझती है, चाहे वो दुबई में बैठी हो, चाहे कानपुर में बैठी हो, चाहे मुंबई में बैठी हो, चाहे इंदौर में बैठी हो। इशू भाषा का नहीं है, इशू कनेक्शन का है, क्योंकि सिनेमा तब बनता है जब आप अपनी ऑडियंस को समझते हैं। और ऑडियंस को समझने के लिए जरूरी नहीं कि आप उनकी भाषा बोलें, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि बॉलीवुड एक भाषा में बात करता है और सपने दूसरी भाषा में बेचता है। ऑडियंस अब टाइटल्स पढ़ लेगी, एक्सेंट भी समझ लेगी, इंग्लिश भी समझ लेगी, बस एक चीज है जो ऑडियंस के साथ नहीं चलती, एंड दैट इज फेकनेस। हमें चाहिए कनेक्शन। लेकिन इस फिल्म के एक गाने का जबरदस्त कनेक्शन लोगों के साथ ऑलरेडी बनता हुआ नजर आ रहा है। आई हैव बीन हियरिंग इट ऑन लूप, मेरे दिमाग से ये गाना नहीं निकला है। इट्स ऑन नंबर 6 दिस वीक, माशूका फ्रॉम कॉकटेल 2, 4 पोजीशंस ऊपर, सर्टिफाइड बैंगर बाय प्रीतंदा। क्रिटिक्स गए तेल लेने।
1: नंबर 6।

मिर्ची, इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। नंबर 5।

नंबर पांच पे था गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर 27 वीक्स ऑन द काउंटडाउन। और नंबर चार पे इस हफ्ते धुरंधर की ही सीक्वल का गाना है आरी आरी बाय द बॉम्बे रॉकर्स, विच टेल्स यू एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द होल्ड दिस फ्रेंचाइज स्टिल हैज ऑन द ऑडियंसेस। लेकिन धुरंधर को देखकर मुझे एक और बात याद आती है, सम कोलैबोरेशंस राइट जस्ट वर्क, उसका कोई रीजन नहीं होता, यू कांट एक्सप्लेन इट, यू कांट मैन्युफैक्चर इट। शाहरुख खान और करण जौहर को देखिए, अक्षय कुमार और प्रियदर्शन को देखिए, और मेरी लिस्ट में एक और जोड़ी है, संजय दत्त और संजय गुप्ता। मुझे ऑनेस्टली उनके फॉलआउट के बारे में कुछ नहीं पता, आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन इट। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस बात से है कि ये दोनों फिर कब साथ काम करेंगे, क्योंकि संजय गुप्ता ने संजय दत्त को सिर्फ कास्ट नहीं किया, उन्हें एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बना दिया। हर एंट्री लगी लार्जर देन लाइफ, संजू बाबा की वॉक, उनकी चाल पेल डेंजरस, हर फ्रेम एक पोस्टर लगा। वो लेदर जैकेट्स, वो हैवी बूट्स, वो डार्क ग्लासेस, वो दाढ़ी, वो भारी आवाज, संजू बाबा हीरो कम अर्बन लेजेंड ज्यादा लगते थे। और फिर आई एक फिल्म दैट चेंज्ड एवरीथिंग, कांटे, फिल्म दैट प्रैक्टिकली अनाउंस्ड ये बॉलीवुड हीरोज हमेशा हीरोज नहीं होते। उस फिल्म की स्पिरिट था एक गाना, रामा रे। उस गाने ने हर रूल को तोड़ा, ना उसमें रोमांस था, ना स्विट्जरलैंड में डांस कर रहा था कोई, ना कोई प्रिटेंशन था कि ये सारे अच्छे लोग हैं, बस छह क्रिमिनल्स स्टेयरिंग डेस्टिनी देयर किस्मत इन द फेस, लालच, बगावत, भाईचारा, और बीच में संजय दत्त की आवाज, साउंडिंग लाइक अ मैन हु हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड व्हाटएवर केम नेक्स्ट। दैट्स व्हाई रामा रे वाजंट जस्ट अ सॉन्ग, इट वाज अ स्टेटमेंट, एंड व्हाट अ कंपोजिशन बाय आनंद राज आनंद, ब्रेकिंग ऑल द रूल्स। ये गाना है मेरे इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक फ्रॉम कांटे। जय

0: वाओ, विल द फिल्म आल्सो बी वाओ, करते हैं इंतजार। लेकिन नंबर वन गाने तक पहुंचने से पहले लेट मी जस्ट से मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूं, बिकॉज़ शायद हम देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं द डेथ ऑफ कूल। ना मैं किसी एक्टर की बात करूंगा, ना किसी कंट्रोवर्सी को डिस्कस करूंगा, मैं एक फीलिंग की बात कर रहा हूं, एक जॉनर की, एक दुनिया की। देखो बॉलीवुड में हीरोज बहुत आए, शायद बहुत आएंगे, लेकिन विलन को सुपरस्टार बनाने का काम सिर्फ एक फिल्म ने किया, एंड दैट वाज डॉन। डॉन सिर्फ एक फ्रेंचाइज नहीं है, डॉन इज कूल। वो सूट्स, वो स्वैगर, वो कॉन्फिडेंस, द फीलिंग के रूम में सबसे खतरनाक आदमी वही है, और उसे इस बात की कोई जल्दी भी नहीं है। आज भी सोचिए, हमारे पास हॉरर कॉमेडी है, we've got romance, we've got action, we've got patriotism, लेकिन stylish international crime thriller, criminal mastermind, ऐसा anti-hero जिसके लिए आप secretly root करने लगते हो, there is none, zero, कोई भी नहीं है। और शायद इसलिए Dawn important है, क्योंकि जब Bollywood हर दूसरे हफ्ते एक sequel announce करता है, तब उसकी सबसे unique franchise uncertainty में खड़ी है, and that feels strange। हो सकता है Dawn 3 बनेगी, हो सकता है कि नहीं बनेगी, लेकिन अगर ये कहानी यहीं रुक गई तो बॉलीवुड सिर्फ एक फ्रेंचाइज नहीं खोदेगा, बॉलीवुड अपना सबसे स्टाइलिश क्रिमिनल खोदेगा, और शायद थोड़ा सा कूल भी, विच इज वाई आई सेड इट्स द डेथ ऑफ कूल। सो नाउ इट इज अप टू फरहान अख्तर, वही डिसाइड कर सकते हैं इफ इंडिया गेट्स अनदर डॉन, इफ द वर्ल्ड गेट्स अनदर डॉन, या फिर मे बी वी हैव सीन द लास्ट ऑफ हिम। फिलहाल 16 हफ्तों से नंबर वन एंड स्टिल रिफ्यूजिंग टू मूव, ये है शरारत फ्रॉम धुरंधर वन, शाश्वत सचदेव का बनाया हुआ ये एवरलास्टिंग बैंगर।
1: नंबर वन, तूने

0: और इस एपिसोड की एक ही बात मेरे साथ रहने वाली है। बॉलीवुड हर वक्त बदलता रहता है, नए चेहरे आते हैं, नई आवाजें आती हैं, कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं और कुछ गाने हमेशा के लिए साथ चल पड़ते हैं। बस इसी बदलती हुई ट्रिप का नाम है द मिर्ची टॉप 20। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ only on Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: Mirchi. It's hot.
1: Radio Mirchi, it's hot.
2: Mirchi.

0: Energy. It's hot.
1: Do tole ki mundri la de, kintole.

गाँव है रेला ऊंचाओ यू पटका है ये देसी मेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो नाचो अरे धूम धूम थिरके जा पाओ मैं जान।

0: Mirchi, it's hot.
1: तेरी मम्मी की जय

तुझको आए पसीना, शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना, चकली चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: प्यार में चमको जैसे जुगनू। रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Let's go crazy.

Mirchi. It's hot.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है टू सेट द पॉप क्लॉक फॉर द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। इस बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गाने हैं। हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है, सम स्पेशल शाउट आउट्स एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंटडाउन के विद गाना नंबर 10। अदनान सामी की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स। गाने का नाम है लिपस्टिक। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है। दिस सुपर फन सॉन्ग बाय अदनान इज ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद दिलजीत दोसांझ द डीलर, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके डीलर इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक, अदनान सामी का लिपस्टिक देन दिलजीत का डीलर, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 10।

0: This song screams that Punjabi आ गए हैं वे दिलजीत दोसांझ की आवाज उन्हीं की कंपोजिशन गाने का नाम है डीलर 11 हफ्तों से पंजाबी इस काउंटडाउन पे रेजिडेंट बन चुके हैं पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके डीलर वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10 बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों के काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं. इंस्टाग्राम पर जाओ मुझे फॉलो करो बिल्कुल फ्री है मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना शेयर करना है कोई बातें बतानी हो बिंदास आके हिट मी अप. अक्सर आप लोग मुझसे गाने शेयर करने से ज्यादा आजकल गानों का नाम पूछते हो कि यार वो मैंने बाद में ट्यून किया था और ये वाला गाना कौन सा था. डोंट वरी शो के बीच में हम आपके लिए पूरा काउंटडाउन वापस रीकैप करेंगे. अभी काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है दैट्स बाय मीका सिंह. नाम ऐसा है सुन के आपको उनकी आवाज याद आ जाती है. आवाज ऐसी है कि एक वर्ड सुन के ही हमको पता चल जाता है कि कौन सा आर्टिस्ट है. ही इज इनक्रेडिबली यूनिक दैट वे. चाहे उनके फिल्मों के गाने हो नॉन फिल्म गाने हो मीका सिंह इज अ कैरेक्टर in his own right. सोचने वाली बात है all artists want that identification, right? कितनी बार होता है that हम कोई गाना चलाते हैं हम सोचते रह जाते हैं कि इसने गाया है उसने गाया है किसका गाना है. बट विद मीका सिंह there's never a scope of any confusion. उनकी आवाज ही उनके गानों की टेकअवे फैक्टर है. पिछले हफ्ते मैंने आपको इस काउंटडाउन पे एक ऐसा गाना सुनाया था आपको इंट्रो म्यूजिक सुन के बताना था ये कौन सा गाना है. कभी कभार वो इंट्रो म्यूजिक भी गाने का टेकअवे फैक्टर होता है. रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए एक बार फिर से सुनाती हूँ बताओ ये कौन सा गाना है.

0: @RJKalika on Instagram पर आके मुझे बताओ ये कौन सा गाना है, मीका का गाना है, जल्दी आके बताओ म्यूजिक किसका है। Now back to the countdown, अगले वाला गाना is the other rapper मीका सिंह का गाना, गाने का नाम है छोरी। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जम करके छोरी is this week on गाना नंबर 8। You're listening to गाना ID Top 10, बंदी का नाम है कनिका, enjoy।
1: Number 8।

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का गाना अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। गाने का नाम है ए अजनबी, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, which is all about the hottest pop music of the week. Is bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram par jaiye, mujhe follow karo. Follow karna bilkul free hai. Mera handle is @RJKanika. I truly believe that aap gaane share karte hai na, jisse bhi, jis dost se, wahan pyar padta hai. और हर हफ्ते आप सब इतने सारे गाने शेयर करते हो हमारे साथ। अशकाय और मैं आपके सारे सजेशंस को ध्यान से देखते हैं for our segment which is called हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गाने फीचर करते हैं। ऑनेस्टली वी लव द क्लासिक इंडी पॉप एंड आपके सजेशंस, जिस तरह से, जिस एंथुजियाज्म से आप गाने शेयर करते हो, कहानियां बताते हो, इट जस्ट मेक्स अस फील सो हैप्पी। ऐसा लगता है कि मैं पूरे शो में दो बार ये करूं, पर इट्स नॉट पॉसिबल। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: कृष्ण

सॉन्ग मीका का गाना कॉल समथिंग समथिंग. If you are from the 2000s ka generation, you know the impact of this song. Before Meeka Singh became voice of Hindi film songs ka anthem, jaise ki Mauja Hi Mauja, Subah Hone Na De from Desi Boys, Aankh Mare from Simba, matlab unki awaaz hum sunte hain aur wo party wali awaaz yaad aati hai. 440 volt from Sultan. Meeka Singh owns all these songs. ये गाने इतनी बड़ी फिल्मों के गाने हैं, बट इन हिज ओन राइट उनके नॉन फिल्म गाने लाइक समथिंग समथिंग का भी एग्जैक्टली वही इम्पैक्ट पड़ा था उनके करियर पर, उनके ऑडियंसेस पर. ये गाना उनके इंडिपेंडेंट पॉप फेस का एक मेजर पार्ट रह चुका है और उनके एल्बम का टाइटल ट्रैक भी था. गाने में कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलोसफी है ही नहीं. द सॉन्ग इंट्रोड्यूसेस मीका सिंह एज अ कैरेक्टर टू अस. एक चीकी फ्लर्टेशन है, थोड़ी पंजाबी पॉप वाली एनर्जी भी है, एंड द हुक ऑफ द सॉन्ग जो पहली बार सुनते ही आपके दिमाग में घर कर लेता है. आई मीन इट, आई चैलेंज यू, ये गाना सुनने के बाद आप इसको हम नहीं करेंगे. अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. द बिगेस्ट पार्टी वॉइस ऑफ आवर जनरेशन मीका की आवाज में, दिस इज समथिंग समथिंग, अ 2006 इंडी पॉप सॉन्ग प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. बंदी का नाम है आरजे कनिका. एंजॉय.

0: गॉड मीका सिंह, योर वॉइस इज गॉट दैट मिस्चीवियस चार्म, मतलब ऐसा लगता है कुछ छुपा रहा है, कुछ मतलब नहीं नहीं है, मैं नहीं ट्रस्ट कर रही हूँ इस पे, दैट्स द वाइब ही गिव्स मीका सिंह की आवाज में. दिस वाज समथिंग समथिंग ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे करेंगे ऑन इंस्टाग्राम पर आओ एंड अपने सजेशंस बिंदास दो. ये मत सोचो कि ये गाना थोड़ी ना ये लोग चलाएंगे. रोहन फ्रॉम बैंगलोर ने हमको समथिंग समथिंग रेकमेंड किया था एंड हिज स्टोरी बिहाइंड इट जस्ट मेड अस लाफ सो मच दैट वी हाईली रेजोनेट विद हिम. 90s 2000s का वो आइकॉनिक इंडी पॉप गाना व्हिच यू स्टिल थिंक इज एन एब्सोल्यूट बैंगर, हमसे आगे शेयर करो एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की तरफ. हिमेश रेशमिया की आवाज में रजत नागपाल राणा सोतल का गाना, गाने का नाम है शराब. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके शराब इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10. बंदी का नाम है कनका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 5.

नंबर पांच पे था गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर 27 वीक्स ऑन द काउंटडाउन, और नंबर चार पे इस हफ्ते धुरंधर की ही सीक्वल का गाना है आरी आरी बाय द बॉम्बे रॉकर्स, विच टेल्स यू एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द होल्ड दिस फ्रेंचाइज स्टिल हैज ऑन द ऑडियंसेस। लेकिन धुरंधर को देखकर मुझे एक और बात याद आती है, सम कोलैबोरेशंस राइट जस्ट वर्क, उसका कोई रीजन नहीं होता, यू कांट एक्सप्लेन इट, यू कांट मैन्युफैक्चर इट। शाहरुख खान और करण जौहर को देखिए, अक्षय कुमार और प्रियदर्शन को देखिए, और मेरी लिस्ट में एक और जोड़ी है, संजय दत्त और संजय गुप्ता। मुझे ऑनेस्टली उनके फॉलआउट के बारे में कुछ नहीं पता, आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन इट। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस बात से है कि ये दोनों फिर कब साथ काम करेंगे, क्योंकि संजय गुप्ता ने संजय दत्त को सिर्फ कास्ट नहीं किया, उन्हें एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बना दिया। हर एंट्री लगी लार्जर देन लाइफ, संजू बाबा की वॉक, उनकी चाल फेल्ट डेंजरस, हर फ्रेम एक पोस्टर लगा। वो लेदर जैकेट्स, वो हेवी बूट्स, वो डार्क ग्लासेस, वो दाढ़ी, वो भारी आवाज, संजू बाबा हीरो कम अर्बन लेजेंड ज्यादा लगते थे। और फिर आई एक फिल्म दैट चेंज्ड एवरीथिंग, कांटे, फिल्म दैट प्रैक्टिकली अनाउंस्ड कि बॉलीवुड हीरोज हमेशा हीरोज नहीं होते। उस फिल्म की स्पिरिट था एक गाना, रामा रे। उस गाने ने हर रूल को तोड़ा, ना उसमें रोमांस था, ना स्विट्जरलैंड में डांस कर रहा था कोई, ना कोई प्रिटेंशन था कि ये सारे अच्छे लोग हैं, बस छह क्रिमिनल्स स्टेयरिंग डेस्टिनी देयर किस्मत इन द फेस, लालच, बगावत, भाईचारा, और बीच में संजय दत्त की आवाज, साउंडिंग लाइक अ मैन हु हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड व्हाटएवर केम नेक्स्ट। दैट्स व्हाई रामा रे वाजंट जस्ट अ सॉन्ग, इट वाज अ स्टेटमेंट, एंड व्हाट अ कंपोजिशन बाय आनंद राज आनंद, ब्रेकिंग ऑल द रूल्स। ये गाना है मेरे इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक फ्रॉम कांटे। जाने

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 3

0: वाओ, विल द फिल्म आल्सो बी वाओ, करते हैं इंतजार। लेकिन नंबर वन गाने तक पहुंचने से पहले लेट मी जस्ट से मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूं, बिकॉज शायद हम देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं द डेथ ऑफ कूल। ना मैं किसी एक्टर की बात करूंगा, ना किसी कंट्रोवर्सी को डिस्कस करूंगा, मैं एक फीलिंग की बात कर रहा हूं, एक जॉनर की, एक दुनिया की। देखो बॉलीवुड में हीरोज बहुत आए, शायद बहुत आएंगे, लेकिन विलन को सुपरस्टार बनाने का काम सिर्फ एक फिल्म ने किया, एंड दैट वाज डॉन। डॉन सिर्फ एक फ्रेंचाइज नहीं है, डॉन इज कूल। वो सूट्स, वो स्वैगर, वो कॉन्फिडेंस, द फीलिंग के रूम में सबसे खतरनाक आदमी वही है, और उसे इस बात की कोई जल्दी भी नहीं है। आज भी सोचिए, हमारे पास हॉरर कॉमेडी है, we've got romance, we've got action, we've got patriotism, लेकिन स्टाइलिश इंटरनेशनल क्राइम थ्रिलर, क्रिमिनल मास्टरमाइंड, ऐसा एंटी हीरो जिसके लिए आप सीक्रेटली रूट करने लगते हो, देयर इज नन, जीरो, कोई भी नहीं है। शायद इसलिए डॉन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बॉलीवुड हर दूसरे हफ्ते एक सीक्वल अनाउंस करता है, तब उसकी सबसे यूनिक फ्रेंचाइज अनसर्टेंटी में खड़ी है, एंड दैट फील स्ट्रेंज। हो सकता है डॉन 3 बनेगी, हो सकता है कि नहीं बनेगी, लेकिन अगर ये कहानी यही रुक गई तो बॉलीवुड सिर्फ एक फ्रेंचाइज नहीं खोदेगा, बॉलीवुड अपना सबसे स्टाइलिश क्रिमिनल खोदेगा, और शायद थोड़ा सा कूल भी, विच इज वाई आई सेड इट्स द डेथ ऑफ कूल। सो नाउ इट इज अप टू फरहान अख्तर, वही डिसाइड कर सकते हैं इफ इंडिया गेट्स अनदर डॉन, इफ द वर्ल्ड गेट्स अनदर डॉन, या फिर मे बी वी हैव सीन द लास्ट ऑफ हिम। फिलहाल 16 हफ्तों से नंबर 1 एंड स्टिल रिफ्यूजिंग टू मूव, ये है शरारत फ्रॉम धुरंधर 1, शाश्वत सचदेव का बनाया हुआ ये एवरलास्टिंग बैंगर।
1: नंबर 1।

0: और इस एपिसोड की एक ही बात मेरे साथ रहने वाली है। बॉलीवुड हर वक्त बदलता रहता है, नए चेहरे आते हैं, नई आवाजें आती हैं, कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं और कुछ गाने हमेशा के लिए साथ चल पड़ते हैं। बस इसी बदलती हुई ट्रिप का नाम है द मिर्ची टॉप 20। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। Mirchi, it's hot.
2: Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला। बचपन

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

पेस्ट्री सैंडविच, हैमबर्गर या बटर रोल, सबसे मैं हूँ टेस्टी, सुन ले मैं हूँ बेबी डॉल। गुस्सा तेरी गोली जैसा बोल तलवार से, दिल का शिकार कर हनी जरा।

0: रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची

0: बस तुम रहते हो।
1: झनक झनक झन टपक टपक झनक खनक खन।

Ma da ni da.

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई पंग होगी।

एंड मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ऑन वर्चुअल मॉर्निंग्स सर्विंग वेदर अपडेट्स राइट नाउ। तो अभी फिलहाल टेम्परेचर हो रहा है 64 डिग्री फारेनहाइट, इट्स क्लाउडी, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये है कि विंड जो है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ड्रामेटिक है आज, इट्स मेकिंग इट फील लाइक 60 डिग्री फारेनहाइट। यानी कि वेदर कह रहा है टेम्परेचर अलग चीज है और एक्सपीरियंस अलग चीज है। गुड न्यूज ये है कि लास्ट 24 आवर्स में जैसे जीरो रेन हुई थी, वैसे ही अगले 24 आवर्स में जीरो रेन इज एक्सपेक्टेड। तो अपने अम्ब्रेला को छुट्टी दी जा सकती है, अपनी लॉन्ड्री को फाइनली फ्री किया जा सकता है। वैसे सुबह 7 बजे से जो पार्टली क्लाउडी स्काइज बने हुए हैं वो 9 बजे तक चलने वाले हैं। थोड़ा सा मूडी रहने वाला है, थोड़ा सा मिस्टीरियस रहने वाला है, लेकिन सुबह 9 बजे के बाद सनशाइन बोलेगी हेलो। मोस्टली सनी कंडीशंस आने वाली आफ्टर दैट, सो यू माइट जस्ट स्टार्ट लाइकिंग योर कोवर्कर। आज का टेम्परेचर रेंज इज अ कम्फी 59 डिग्री फारेनहाइट से लेकर 76 डिग्री फारेनहाइट तक, लेकिन फील होगा 58 से लेकर 76 डिग्री फारेनहाइट तक। इसका ट्रांसलेशन ये है कि सुबह सुबह तो चाय और हुडी की जरूरत पड़ने वाली है, आफ्टरनून में वेट आई हैव अ जलजीरा टाइप की फीलिंग आ जाएगी, एंड इवनिंग आते आते फिर से तुम्हें रूह अफजा पीने का मन करेगा। बट ऑल्सो फन फैक्ट, आज का दिन थोड़ा सा कूलर है यस्टरडे के कंपेरिजन में। यस्टरडे वी रीच्ड अराउंड 84 डिग्री फारेनहाइट, एंड टुडे नो थैंक यू, वी आर डूइंग अ सॉफ्ट लॉन्च ऑफ समर। सो माई मिर्ची फैम, लेयर के प्लेयर बनो आज के दिन भी, एंजॉय द सनशाइन एंड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। बाहर निकलोगे तो SPF 50++++ लगा कर ही जाना, और मिर्ची सुनते रहो क्योंकि मैं बोलूँ तो प्रिसिला तुम्हारे साथ हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स पर। कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

Good morning. This is your girl Priscilla and welcome to Mirchi Mornings yet again. And अब हम चलने वाले हैं एक time traveling journey पर. आज के दिन 632 में मदीना प्रॉफिट मोहम्मद passed away. Fast forward to 1936, India State Broadcasting Service officially became All India Radio. मतलब सालों पहले somewhere आज के दिन radio set, mic check. हम आ गए 1949 में जॉर्ज ऑरवेल रिलीज्ड 1984 अ बुक सो अहेड ऑफ इट्स टाइम इवन टुडे पीपल रीड इट एंड गो वेट व्हाई डज दिस फील फैमिलियर 1953 अ मेजर मोमेंट इन द यूएस रेस्टोरेंट्स इन वॉशिंगटन डीसी कुड नो लॉन्गर रिफ्यूज सर्विस टू ब्लैक कस्टमर्स 1968 में जेम्स अर्ल रे वॉज अरेस्टेड इन लंडन आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर देन 1987 में न्यूजीलैंड सेड No, thank you, and officially became a nuclear-free zone. Aur aaj, it's also World Oceans Day, so maybe thank the ocean, because without it, half of us wouldn't have dramatic beach photos, right? And ab jaldi se note karo Instagram aur X par mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

क्वेश्चन ऑफ द मॉर्निंग, आखिर वेडिंग्स कितनी एक्सपेंसिव होनी चाहिए? एज अ देसी इसका कोई सही जवाब है नहीं। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में। वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पर सेलिब्रिटी न्यूज कभी भी मिर्चीदार ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सो आज मैं तुमसे बात करने वाली हूँ पॉप सुपरस्टार डुआ लिपा एंड एक्टर कैलम टर्नर की शादी के बारे में। अब शादी तो हो चुकी है, लेकिन इट वॉज अ बिग मल्टी डे पार्टी इन पालेर्मो सिसिली इटली। एंड रिपोर्ट्स के हिसाब से द सेलिब्रेशंस वर सीरियसली लक्स। थिंक अबाउट ग्लैम गेस्ट्स, ड्रीमी वेन्यूज एंड इनफ वेडिंग कंटेंट टू कीप आंटीज एनालाइजिंग फॉर मंथ्स। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट था इसमें। टू कीप थिंग्स प्राइवेट, सम रोड्स एंड पब्लिक एक्सेस एरियाज रिपोर्टेडली गॉट रिस्ट्रिक्टेड एंड लोकल्स ने कहा एक्सक्यूज मी, हम भी यहाँ रहते हैं। एंड दैट लेड टू प्रोटेस्ट with some residents saying public spaces felt disrupted during the celebrations. Reports also mentioned compensation discussed for affected people. And honestly, desi expats understand both sides. एक साइड है ओ माई गॉड माई ड्रीम वेडिंग, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है देसी कल्चर में, एंड दूसरी साइड है भाई ये ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, इसमें ऑफिस कैसे जाए। ये दोनों बातें हम झेल चुके हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, शादी ग्रैंड हो सकती है लेकिन डिसरप्शन ग्रैंड नहीं होना चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि शादी में हमें इन्वाइट भी नहीं किया लेकिन शादी की वजह से हमारी लाइफ में खर्चा हो गया। वैसे अगर तुम शादी करोगे तो अपनी शादी से ट्रैफिक रोकोगे या नहीं रोकोगे? डू लेट मी नो, डीएम करो मुझे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, स्लाइड इनटू माय डीएम्स। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूं तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला और शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। अब मुझे पता है कुछ लोग अभी फिलहाल ट्रेन में होंगे, कुछ लोग ऑफिस लॉगिन स्क्रीन को स्टेयर कर रहे हैं और कुछ लोग पर्सनली ऑफेंड हो रहे हैं मंडे से, बाकी के कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करते हुए कुछ मंचिंग कर रहे हैं, कुछ लोग अपना लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ अपने बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये सब कुछ के बीच में ये एक शो शुरू हुआ है जो बड़ा ही सिंपल है। थोड़ा सा बॉलीवुड की बातें हम करने वाले हैं, थोड़ी सी बकबक होने वाली है, थोड़ा सा बैक होम का नॉस्टैल्जिया होने वाला है, थोड़े करंट सीन के बारे में डिस्कशंस भी होने वाले हैं और साथ साथ में होने वाला है फुल ऑन बैंगर म्यूजिक। मैं बोलूं तो प्रिसिला बनाती हूँ तुम्हारी हर मॉर्निंग को मिर्ची मॉर्निंग्स। शो शुरू हो चुका है, तुम भी शुरू हो जाओ, मुझे अपने साथ में रखो। इंस्टा और एक्स पर भी मुझे ढूंढ सकते हो तुम। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। स्लाइड इन टू माई DMs जस्ट लाइक वी आर गोइंग टू स्लाइड इन टू द नेक्स्ट बैंगर सॉन्ग। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची आवर का 3 ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. सबसे पहले वेनेजुएला's एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज मेड अ विजिट टू सत्य साई बाबाज आश्रम इन प्रशांति निलयम इन आंध्र प्रदेश एंड वाज सीन स्पेंडिंग टाइम इन प्रेयर एंड मेडिटेशन. दिस हैपेंड आफ्टर मीटिंग्स इन इंडिया फोकस्ड ऑन कोऑपरेशन अक्रॉस एरियाज लाइक एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड मोर. एंड नंबर 2 पर बिग शेयर मोमेंट, इंडियाज वुमेन्स फुटबॉल टीम डिफीटेड बांग्लादेश 3-1 एंड लिफ्टेड their 6th SAFF Women's Championship title. Blue Tigresses came in strong and brought the trophy home after a 7-year wait. And number 3 per Germany's Alexander Zverev won his first ever French Open title and became the first German man in 89 years to do it. Also, yes, prize money happened, but honestly, after 5 sets, somebody please give him a massage coupon too. And that, my friend, was Mirchi Hour Ka 3 for this hour. अभी फिलहाल चलते हैं मिर्ची दार बैंगर्स की तरफ. मीनवाइल यू गो एंड चेक आउट माय सोशल मीडिया हैंडल्स. मिर्ची प्रेस इज माय नेम ऑन एक्स एंड इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करने के लिए 9033 मिर्ची इज द नंबर. दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अकड़ी बकड़ी दिक्क दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिका दिकड़ी दिक्क दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकीरो दिकीरो

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला एंड वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड आज कॉन्वर्सेशन स्टार्टर कम्स फ्रॉम एक्टर एंड एमपी कंगना रनौत, हु रिसेंटली सेड दैट नर्स यूनिफॉर्म्स इन इंडिया स्टिल लुक वेरी ब्रिटिश एंड सजेस्टेड दैट दे कुड बी मोर इंडियन इन डिजाइन। शी ऑल्सो रिपोर्टेडली सेड डिटेल्स लाइक कैप्स, पिन्स एंड बेल्ट्स हैव इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम ओल्डर वेस्टर्न यूनिफॉर्म ट्रेडिशंस। वन थिंग शी एडेड दो, एनी चेंजेस शुड हैपन बेस्ड ऑन व्हाट नर्सेस देमसेल्व्स प्रेफर। नाउ दिस इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स दैट इंस्टेंटली स्प्लिट द ग्रुप चैट। टीम ए कहेगी कि कल्चर मैटर्स, टीम बी कहेगी कंफर्ट मैटर्स एंड टीम सी कहेगी बस यार यूनिफॉर्म में पॉकेट्स होने चाहिए, महिलाओं को और क्या चाहिए। रियल रेवोल्यूशन वही है, बिकॉज ऑनेस्टली इफ देयर इज वन प्रोफेशन दैट डिजर्व्स प्रैक्टिकल फैशन इट्स नर्सेस, क्योंकि लॉन्ग शिफ्ट्स रहती है, नॉन स्टॉप मूवमेंट रहता है, हेल्पिंग पीपल एंड इस सब में आपको स्मार्ट भी दिखना है एंड आपको कंफर्टेबल भी रहना है। फैशन शुड एक्चुअली वर्क फॉर देम, नॉट द अदर वे राउंड। What do you think? I'm sure as an expat, तुम बहुत अच्छे से बात समझते होगे, because half of us moved countries and still somehow own one kurta, one hoodie and 17 emotional attachments to both. Well, I have at least 365 such clothes. What do you think about it? मुझे बताओ, DM करो, मेरा handle है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp पर मेरा number है 9033 Mirchi. That's 9033647244. Mera naam hai Priscilla. This is Mirchi Mornings. Stay tuned and stay hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

गुड मॉर्निंग जी, मैं हूँ प्रिसिला एंड इफ टुडे इज योर हैप्पी वाला बर्थडे, पॉज एवरीथिंग, एक्सेप्ट करो इमेजिनरी कन्फेटी एंड ऑफिशियली अलाउ योरसेल्फ वन अननेसेसरी डिजर्ट जिसकी कैलोरीज तुम काउंट नहीं करोगे और ये डॉक्टर अप्रूव्ड है. नो एक्चुअली नहीं है, लेकिन बर्थडे अप्रूव्ड है. आज का बर्थडे क्लब इज लुकिंग सरप्राइजिंगली आइकॉनिक. अगर आज तुम्हारा बी डे है तो यू आर शेयरिंग इट विद बॉलीवुड रॉयल्टी डिम्पल कपाड़िया जी. शी इज द फॉरएवर एलिगेंट स्टार ऑफ बॉलीवुड हु मेड जनरेशंस बिलीव्ड कि ड्रामेटिक हेयर होना इज अ मस्ट. ऑल्सो सेलिब्रेटिंग फिटनेस क्वीन, योगा गुरु एंड फुल टाइम हाउ इज शी एजिंग बैकवर्ड्स गैल शिल्पा शेट्टी जी, उनका भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है. और इंटरनेशनल साइड पर वी गॉट बॉनी टाइलर. ऑल्सो शेयरिंग द डे विथ यू इज टिम बर्नर्स ली, इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब. मतलब इफ यू मेट योर पार्टनर ऑनलाइन, ऑर्डर चाय ऑनलाइन, इट्स ऑल थैंक्स टू हिम. एंड साथ साथ में एक्टर्स जूलियाना मार्ग्यूलिस एंड कीनन आइवरी वेन्स का भी हैप्पी बर्थडे है. सो ऑल माई बर्थडे पीपल आउट देयर, आज का मिशन सिंपल होना चाहिए. टेक ऑल द compliments you can get, order everything sweet that you want to eat and ignore unread emails for today. बाकी की चीजें कल पर डाल दो. आज तो तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो. अभी मिर्चीदार बैंगर्स मैं तुम्हारे लिए प्ले करने वाली हूँ. तब तक तुम बिना शर्माए मुझे फॉलो कर सकते हो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर बिंदास अपने मैसेजेस भेजो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244. तो देर किस बात की है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: हेलो देयर, दिस इज प्रिसिला विद यू एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, जहां पर अब हम सुनने वाले हैं सोना और चांदी का रेट क्या चल रहा है।
1: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,330, $4,330 पर ट्राई उसके साथ। गोल्ड के प्राइजेस ट्रेड कर रहे हैं और इस साल के लोवेस्ट ट्रेडिंग पॉइंट पर है। गोल्ड अमेरिका में इंडिया से सस्ता है। किस तरह से गोल्ड में अमेरिका में इन्वेस्ट करते हुए आप अपने पैसे सेव कर सकते हैं, राज ज्वेल्स के टीम मेंबर से कनेक्ट करें और रिस्पॉन्सिबली गोल्ड बार्स और सिल्वर बार्स 1 ounce 100 gram किलो बार्स ऑफ पैम सर्टिफाइड। आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग।
0: There you have it, सोना चांदी का रेट अप टू डेट। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। फटाक से मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर कनेक्टिंग नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: जुदा। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड वेलकम टू मिर्ची का राशि जोन पार्ट वन।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: Aries yani Mesh Rashi, fun is calling but responsibility is doing missed calls. Finish the boring thing first. Future you will send thank you flowers. Lucky color is electric blue. Lucky number is 14. Taurus yani ki Vrishabh Rashi, drama quota officially full ho chuka hai. Someone else's overreaction is not your group project. Stay calm and don't become vague. Lucky color is olive green. Lucky number is 22. Gemini yani Mithun Rashi, that awkward relationship energy, you may need to make the first move. ना ईगो के जस्ट वन टेक्स्ट, नॉट हे स्ट्रेंजर। लकी कलर इज कोरल पीच। लकी नंबर इज 5। कैंसर यानी कर्क राशि, पीपल आर फीलिंग एक्स्ट्रा वार्म टुवर्ड यू टुडे। यूज योर पावर्स वाइजली। काइंडनेस इज इक्वल टू अनएक्सपेक्टेडली प्रीमियम इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। लकी कलर इज पर्ल व्हाइट। लकी नंबर इज 18। लियो यानी कि सिंह राशि, स्टॉप एक्टिंग लाइक द यूनिवर्स हैज अ पर्सनल इशू विद यू। यू आर द मेन कैरेक्टर, नॉट द मिसअंडरस्टूड नेटफ्लिक्स एंटी हीरो। स्माइल करो थोड़ा ज्यादा। लकी कलर इज सनशाइन येलो। लकी नंबर इज 31। वर्गो यानी कन्या राशि, टुडेज इनकन्वीनियंसेस मे सीक्रेटली बिकम नेक्स्ट मंथ्स ब्लेसिंग्स। ट्रस्ट द प्लॉट ट्विस्ट, डोंट रेज ईमेल एवरीबॉडी। लकी कलर इज डस्टी रोज। लकी नंबर इज 9। एंड दैट वाज योर राशि जोन पार्ट 1। अगर तुम्हारे प्रेडिक्शन सही हो जाते हैं तो मुझे आकर थैंक यू बोल सकते हो फॉर रीडिंग देम। एंड अभी पार्ट 2 के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मिर्चीदार बैंगर्स के साथ। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ ऑन मिर्ची मॉर्निंग। मुझसे बात करनी है, मुझसे कनेक्ट करना है तो सोशल मीडिया पर फॉलो करो मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मुझे मैसेजेस भेजो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: राशीज़ ओन पार्ट टू में तुम्हारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: मिर्ची राशीज़ ओन।
0: लीब्रा यानी तुला राशि, एडवेंचर एनर्जी अलर्ट, ड्रीम बिगर टुडे बट मे बी डोंट क्विट योर जॉब बिफोर लंच, मैनिफेस्ट करो वो भी रिस्पॉन्सिबली। लकी कलर इज लैवेंडर ग्रे, लकी नंबर इज 27। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, कॉम्प्लीमेंट्स आर कमिंग, एंजॉय देम, बस डोंट स्टार्ट बिलीविंग योर ओन फैन क्लब टू मच, यू आर अमेजिंग। लकी कलर इज रूबी रेड, लकी नंबर इज 8। सैजिटेरियस यानी कि धनुराशि, मनी वाइब्स आर लुकिंग इंटरेस्टिंग बट impulsive spending is watching from the shadows, step away from that add to cart wala button। Lucky color is turquoise, lucky number is 40। Capricorn yani makar rashi, that old disagreement suddenly not worth the energy anymore, growth looks suspiciously peaceful on you। Lucky color is brown, lucky number is 16। Aquarius yani kumbh rashi, not everyone thinks at your speed and that's okay, your uniqueness doesn't need matching settings। Lucky color is silver mist, lucky number is 33। And last but not the least, Pisces yani mean rashi, trust yourself today, even if something goes slightly sideways, you've got enough magic and jugaad to fix it। Lucky color is green and lucky number is 11। And that was Rashi Zone part 2। Abhi filhal Mirchi Dar bangers ka time hai, tab tak tu mujhe follow kar lo। Mirchi Pris is my handle name on Insta and X, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244। Stay tuned and stay hot।

मैं हूँ प्रिसिला एंड अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर से. बट बिफोर आई लीव यू टू योर मीटिंग्स स्कूल रन्स एंड प्रिटेंडिंग यू डिडंट हिट स्नूज थ्री टाइम्स टुडे, वन फाइनल न्यूज तो बनती है राइट. अहेड ऑफ हिज बर्थडे ऑन 14th ऑफ जून यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया एक एआई जनरेटेड म्यूजिक वीडियो ऑनलाइन दैट बेसिकली सेड कॉन्फिडेंस लेवल इज 3000. रिपोर्ट्स से द वीडियो फीचर्ड ड्रामेटिक एआई सीन्स ऑफ Trump doing all kinds of things including riding a motorcycle in front of a temple setting in India, riding a lion, riding a camel and even doing his signature dance moves. और पता है मुझे ये सब देखकर क्या याद आया, वो 80s और 90s के जमाने में हमारे पेरेंट्स के टाइम पर जिस तरह के शादी के वीडियोस बनते थे ना, वो एडिटिंग कमाल होती थी. और आज भी उस फॉर्मेट में उस स्टाइल में हम AI वीडियोस बना सकते हैं. और ये हर देसी एक्सपर्ट ने कहीं ना कहीं अपने घर में देखे होंगे या खुद की शादी में ऐसा हुआ होगा. एंड ऑनेस्टली देसी एक्सपर्ट्स नो दिस एनर्जी वेरी वेल. छोटा सा रिमाइंडर दो, AI वीडियोस जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, क्रिएटिविटी दिखाने के लिए होते हैं, दे आर नॉट रियल फुटेज, सो उनको उतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए. एंड इफ यू सॉ समवन कैजुअली बाइकिंग पास्ट अ टेंपल विद सिनेमैटिक लाइटिंग, मे बी दैट्स आवर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. एंड ऑन दैट नोट अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है. आज के लिए मिर्ची का तड़का बस इतना ही. मिर्ची मॉर्निंग्स पर प्रिसिला की तरफ से टाटा बाय बाय है. यू बी गुड एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड. थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम विथ मी. बट बीच में जाकर मुझे फॉलो भी कर लो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. मिलोगे तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस सेम फ्रीक्वेंसी. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: और नानी का घर हमेशा एक जैसे नहीं रहते।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और ये बात हमने कभी बचपन में सोची नहीं ना कि जो हम इतनी सारी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने जैसी चीज नहीं है, क्योंकि ये हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली। नानी का घर हमेशा नहीं रहता है। एक टाइम ऐसा आता है कि ना नानी होती है और ना वो घर घर जैसा लगता है, फिर वहां जाने का मन भी नहीं करता है। दुनिया कितनी बदल जाती है ना यार। और आप बोलोगे सारा ऑल ऑफ अ सडन ये क्या इतनी इमोशनल बातें कर रही हो तुम। एक्चुअली हुआ क्या ना कि कल मैं कैफेटेरिया में बैठी हुई थी एंड मेरे बाजू वाली जो टेबल थी वहां पर एक नानी और नवासी की जोड़ी आके बैठी और उनका कॉन्वर्सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। एंड सिंस वो लोग अपने ऑर्डर के लिए वेट कर रहे थे और बातें कर रहे थे, तो ऑफकोर्स वो बातें मुझे भी सुनाई दे रही थी क्योंकि वो तो मेरी बगल वाली सीट पर ही बैठे हुए थे ना। तभी नानी जो थी वो अपनी नवासी को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि भाई तुम कुछ लेने की बात करो, किसी चीज पर राजी हो तो मैं तुम्हें दिलाऊं भी। तुम हो कि किसी चीज के लिए हाँ ही नहीं बोलती हो। और जो नवासी थी ना वो बिल्कुल चिल सीन जेंजी नवासी, शी वाज लाइक नानी मुझे कुछ नहीं चाहिए। एम देर आई रियलाइज कि हमारी जनरेशन और आज की जनरेशन में कितना फर्क हो गया यार। मतलब हमें अगर कुछ दिया जाता था वो भी बिना पूछे तो हम नाना करते हुए हाँ कर लिया करते थे यार, क्योंकि उस ना में हाँ ही होती थी। एंड आज आई डोंट रिपेंट दैट बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये जो सारे मौके हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी सिचुएशंस हैं, ये हमेशा नहीं रहती। हमें तब ऑफकोर्स नहीं पता था कि नानी और नानी का घर हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन आज जो हमने लम्हे जी लिए अपनी नानी के घर में, उन्हें जीने के बाद तो लगता है कि जो किया अच्छा किया। कितनी सारी यादें हैं नानी के घर की, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए नानी के घर की यादों को ताजा किया जाए। तो चलो जी, मिड डे मोहब्बत की गाड़ी 90s के गियर में डाल चुकी है और मैं आपसे कह रही हूँ यू स्टे ट्यून विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और हो

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आज अगर मुझे कोई चॉइस दे और मेरे पास ऑप्शन हो कि यार सारा तुम क्या चूज करोगी, कश्मीर या स्विट्जरलैंड की वादियों में खो जाना, वहां पर ट्रैवल करना, या फिर अगर तुम्हें मौका दिया जाए कि तुम बचपन के टाइम में नानी का घर विजिट कर पाओ, तो तुम कौन सा ऑप्शन प्रेफर करोगी? एंड ऑफ कोर्स आप मेरा आंसर जानते हो।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और नानी का घर वो घर हुआ करता था जो कि हमारे घरों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब वहां पर वो सब कुछ था जो हमारे घर में नहीं था, एंड दैट इज नानी का प्यार, ननिहाल का दुलार, जो आज हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं। बड़े होने का मुझे एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही लगता है कि वो लाड प्यार दुलार जो है वो कहीं चला गया। नाउ हमने अपनी सीट्स बदल ली हैं और हम वो जगह पर आ गए हैं जहां पर हम ननिहाल का प्यार प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाय हमारे दिन कहाँ चले गए यार। लेकिन नानी के घर में मुझे वो टाइम याद है जब खाना नेवर यूज टू बी अ टफ जॉब, ना हमारे लिए और ना ही हमारे पेरेंट्स के लिए। हमें खाना खिलाना बहुत बड़ी जॉब हुआ करती थी यार। मतलब आज के टाइम पे व्हेन आई सी माय नीसेस एंड नेफ्यूज, उनको खाना खिलाना कितना बड़ा काम हो जाता है। एक दो घंटा तो लग ही जाता है यार, वो भी टीवी और मोबाइल के जरिए उनको खाना खिलाया जाता है। ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ उन लोगों ने खाना सीखा है। हमारे साथ कभी ऐसा सिनेरियो नहीं हुआ करता था यार। हम तो सारे के सारे कजन एक पंगत में बैठ जाया करते थे, दस्तरखान लगता था, उसके ऊपर खाना लगता था, और सारे के सारे साथ में बैठ के एक दूसरे को देखकर खा लिया करते थे। कभी नहीं सोचते थे और क्वेश्चन करते थे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खाना है, वो नहीं खाना है। जो सब खा रहे वही हम खा रहे होते थे। इनफैक्ट जो खा रहे होते थे उसमें हम कॉम्पिटिशन भी लगा रहे होते थे कि कौन सबसे ज्यादा रोटियां खा पाता है, कौन सबसे ज्यादा गुलाब जामुन खा पाता है, आज देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा भुज्जे खाता है कड़ी में। और कभी कभी तो हम इस चीज की भी कंपटीशन लगा लिया करते थे कि लेट्स सी कौन कितने ज्यादा ग्लास पानी पी लेता है। इसी कंपटीशन को जीत जीत कर या फिर उसमें कभी हार हार के हम पल बढ़ गए। कभी खाना हमारे लिए टफ जॉब हुआ ही नहीं, एंड आई थिंक दैट इज वन बिग रीजन कि आई एम अ बिग फूडी। नाउ आई लाइक एवरीथिंग, कुछ भी खिला दो मैं शौक से खा लूंगी, उसके अंदर स्वाद और प्यार भरा हुआ होना चाहिए। नानी के घर की कुछ बात ही अलग थी और वही बात आज मिडडे मोहब्बत पर हो रही है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हमारे घरों में ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम इस तरीके के नाम दिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट रूम्स को, लेकिन नानी के घर का आर्किटेक्चर वॉज वेरी डिफरेंट।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज इस पिटारे में से नानी का घर निकल के आया है, जो कि हम सबके दिल के अजीज चीज है। एंड नानी के घर में ना कमरों के नाम हुआ करते थे, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, इतने पॉश नेम नहीं हुआ करते थे। नानी के घर में कमरों के नाम हुआ करते थे, जहाँ टीवी रखा है वो टीवी वाला कमरा, जहाँ फ्रिज रखा है वो फ्रिज वाला कमरा, जहाँ अनाज रखा है वो गेहूं वाला कमरा, और जहाँ बिस्तर रखे हैं वो बिस्तर वाला कमरा। इन सभी कमरों में खेल कूद कर हम पले बड़े हैं, और बड़े होने के बाद जब नानी के घर में अब जाते हैं ना, तो आज भी हम उन कमरों को उसी नाम से बुलाते हैं, भले ही आज उनके नाम अलग हो गए हो। कि ये चिंटू का कमरा है, वो बिट्टू का कमरा है, या ये ड्राइंग रूम है और ये लिविंग रूम है, ना जी, हमारे लिए तो आज भी वो टीवी वाला, फ्रिज वाला, अनाज वाला कमरा है। आज उसका नाम बदलने का हमारा दिल बिल्कुल नहीं करता, बिकॉज ये सिर्फ नाम नहीं है भाई, नॉस्टैल्जिया है, यादें हैं बचपन की। जो नानी तो चली गई, लेकिन उनके घर से ये यादें इन नामों के साथ आज भी जुड़ी हुई है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट। सारा ज़माना,
1: सारा का दीवाना। मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: एक गेम हुआ करता था डार्क रूम, और हम वो अक्सर नानी के घर में बिस्तर वाले कमरे में खेला करते थे।
3: नब्बे की गप्पे।
2: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और जैसे कि मैंने पहले भी आपसे ये बात कही थी कि नानी के घर में हर एक कमरे की अपनी एक आइडेंटिटी और एक पर्सनालिटी हुआ करती थी। उसमें से सबसे बड़ी पर्सनालिटी मुझे ना बिस्तर वाले कमरे की लगती थी। यार इतना धमाल किया करते थे ना हम बिस्तर वाले कमरे में, क्योंकि उस कमरे में जितने बिस्तर रखे जाते थे ना, वो बिस्तरों की महक से और उस वार्म्थ से बड़ा ही अलग फील दिया करता था। और सबसे ज्यादा मजा हमें उस कमरे में खेलने में आया करता था। कभी तो बस गर्मी के अंदर बिना पंखे के गद्दों की पूरी लाइन के ऊपर लेट जाया करते थे कि यार हम कितनी ऊंचाई पर लेटे हुए, क्या अलग ही मजा आ रहा है कि यहाँ से सीलिंग टच कर पा रहे हैं। और कभी हम खेला करते थे डार्क रूम करके एक गेम, बिकॉज बिस्तर वाला कमरा ना हमेशा अंधेरे में रहा करता था, और वहां पर गद्दों के और रजाइयों के बीच में छुपने में बड़ा मजा आता था। आज जब मैं सोचती हूँ ना, तो लगता है यार हमारे तो बेड बॉक्स में जितनी थोड़ी बहुत रजाइयां है सो है। नानी के घर में एक बिस्तर वाला कमरा हुआ करता था, जो कि ये बात साफ जाहिर करता है कि किस तरीके से नानी के घर में मेहमानों की ना कमी होती थी और ना ही कभी बिस्तरों की। ऐसे मजे मेहमानों को आज के जमाने में किसी के घर में नहीं आते होंगे जितना कि नानी के घर में आया करते थे। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आजकल बाल्टियां सिर्फ नहाने के काम में या पोछा लगाने के काम में आती हैं। भाई एक जमाने में तो इन बाल्टियों के अंदर आम और खरबूजे रखे जाते थे।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिडडे मोहब्बत पर ये जो 90s का पिटारा खुला है, तो इसके अंदर नानी के घर के ठाट निकल के आ रहे हैं। और ये ठाट वही थे जब बाल्टियों के अंदर भर भर के आम रखे जाते थे पानी डाल के, ताकि ये जल्द से जल्द जो है ठंडे हो जाएं और हम इन्हें खा पाए। कुछ बाल्टियां ऐसी भी होती थी जिनमें खरबूजे हुआ करते थे। आज जब मैं सोचती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि ये कितनी अनरियल सी बात है ना। आजकल तो इतनी तादाद में लोग इकट्ठे ही नहीं होते कि इतने आम और इतने खरबूजे कोई लाए बाजार या मंडी से। लेकिन मुझे याद है कि कैसे मामूजान बाजार से ना पेटी के पेटी उठा के लेकर आते थे आम के, खरबूजों के, और बाल्टियों में भर भर के इन्हें रखा जाता था, क्योंकि फ्रिज के अंदर तो इतनी जगह ही नहीं होती थी ना यार। फ्रिज भी छोटे होते थे, लोग ज्यादा होते थे, और फ्रिज बड़े भी हो गए होते थे ना तो भी छोटे पड़ जाया करते थे, इतने लोग इकट्ठे होते थे गर्मी की छुट्टी में एक छत के नीचे। तो बस जी, ये बाल्टियां फ्रिज का काम किया करती थी। खरबूजे को ठंडा करने के लिए बर्फ डाल दिया करते थे, ताकि खरबूजा जो है वो अच्छा ठंडा हो जाए और फिर उसे काटा जाए। और आम को बाल्टी के अंदर पानी के अंदर भर भर के रख दिया जाता था, और हमारी हमेशा राल टपकती रहती थी कि कब कब ये ठंडे हो और कब हम इन्हें खाएं। और एक और बड़ा शौक हुआ करता था हमें गर्मियों की छुट्टियों में, कि वो खरबूजे के बीज जो होते थे उन्हें हम सुखा दिया करते थे, फिर धोया करते थे और फिर रखा करते थे। और फिर एक काम और किया करते थे, जब वो धुल के साफ हो जाया करते थे, तो अपनी जेबों में भर भर के उन खरबूजों के बीज को हमेशा रखा करते थे, और निकाल निकाल के तोड़ तोड़ के खा लिया करते थे इतनी मेहनत करके। आज इतनी मेहनत हमसे कतई नहीं होगी, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों की बात ही कुछ और थी यार। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करने में मजा जो आता था, आज तो इंस्टाग्राम पर ही दिल भर जाता है। पता ही नहीं लगा यार, कब हमने नानी के घर से अपनी जिंदगियों में ये जंप मारा कि आज हम नानी के घर की सिर्फ बातें ही करते रह जाते हैं। YouTube विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
3: It's hot. Nacho all night. Wanna nacho all night. Do you feel alright? Wanna nacho all night.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आज के घरों के आर्किटेक्चर में अगर मैं कोई एक चीज मिस करती हूँ ना, तो वो है एक आंगन।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। यार, गार्डन्स तो लोग रख लेते हैं, बालकनीज भी लोग रख लेते हैं, लेकिन दिल छोटे हो गए, घरों के डिजाइन्स अलग हो गए और आंगन कहीं गायब ही हो गए यार। मतलब वो एक आंगन जो घर के बीच में हुआ करता था हमारी नानी के घर में, वो कितना इस्तेमाल होता था यार। ऊपर से नीचे हम बातें किया करते थे, टोकरी लटका लटका के सामान ऊपर खींचा करते थे। ये वही आंगन था जहां पर हमने लंगड़ी टांग खेली है, जहां पर हमने सात समंदर खेला है। अभी भी आपसे बात कर रही हूँ ना, तो आंगन में वो डिजाइन पैटर्न बने हुए अभी भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, और इमेजिन कर पा रही हूँ मैं उन डिजाइन पैटर्न्स पर कूदते हुए, पेबल्स खिसकाते हुए हम कैसे 1, 2 का 7 कर दिया करते थे। ये वही आंगन था जो दिन की धूप में जब छतें बहुत गर्म हुआ करती थी तो आंगन हमें संभाल लिया करता था कि अच्छा चलो छत पे गर्मी है तो क्या हुआ, मैं तो डायरेक्ट धूप में नहीं हूँ, मेरा इस्तेमाल कर लो। उसी आंगन में पकड़म पकड़ाई, उसी आंगन में छुपन छुपाई, उसी आंगन में छच्चा छन्नी, उस घर मंगनी, अगर आपने इस गेम के बारे में सुना है तो। हर गेम खेला है हमने। ये आंगन आंगन कम और हमारा कजन ज्यादा लगता था, इससे वाकई में बहुत गहरा रिश्ता था। तभी तो इस आंगन को आज भी घरों की बनावट में ढूंढते फिरते, लेकिन वो अब कहीं नहीं मिलते। और जहां कहीं मिल जाते ना, तो वहां सीधे एक बात निकल के आती है जुबान पर, अरे ये तो बिल्कुल नानी के घर जैसा है ना। You tune in with me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.

Mirchi.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ट्रिंक्स ट्रिंक्स, ये आवाज आपको किसी चीज की याद दिलाती है?
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। वेल, ये आवाज नहीं, ये भाषा थी। जब हम थिएटर में मूवी देखने जाया करते थे, और 90s में तो मल्टीप्लेक्सेस नहीं हुआ करते थे, थिएटर्स ही हुआ करते थे, तो इंटरवेल में समोसे वाले भैया और कोल्ड ड्रिंक वाले भैया आया करते थे, क्रेट में कोल्ड ड्रिंक रखकर, और कोल्ड ड्रिंक की जो कांच की बोतलें होती थी उसे ओपनर से बजाते हुए ट्रिंक्स ट्रिंक्स ऐसा बोलते हुए वो आते थे। मुझे तो बहुत टाइम लग गया यार ये समझने में कि ये बोल क्या रहे हैं, क्योंकि ये ट्रिंक्स नहीं ड्रिंक्स हुआ करती थी, और ड्रिंक्स बोले तो ठंडा, और ठंडा बोले तो नहीं नहीं नहीं ठंडा बोले तो यार मुझे तो बचपन में बहुत सारे ठंडे पसंद हुआ करते थे। लेकिन हाँ, इस आवाज में एक्साइटमेंट जरूर था कि बस अब हो गया इंटरवेल, अब मिलेंगे समोसे खाने को और कोल्ड ड्रिंक पीने को, क्योंकि हमारे लिए ये चीजें तो बहुत खास हुआ करती थी ना। हर रोज थोड़ी ना हमें कोल्ड ड्रिंक्स और समोसे मिला करते थे यार, इतना रिस्ट्रिक्शन रहता था हमारी जिंदगियों में। मगर वो क्या है ना कि इन रिस्ट्रिक्शन से हर चीज की प्यास बढ़ जाती है। अब वो सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीने की प्यास ही क्यों ना हो, वो भी बढ़ जाया करती थी। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कुछ आवाजें ऐसी हैं जो आज शायद हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन अगर उन्हें याद किया जाए ना तो कानों में खनक सी उठती है। एक और एक ऐसी आवाज थी जो कि ठंडक का एहसास थी, सुनो जरा। गेस कर पाए कि ये किस चीज की आवाज है?
2: ये है 90 की गप्पे।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, ये जो भौपू का हॉर्न था ये आपको शोर की तरह सुनाई दे रहा होगा आज, लेकिन ये 90s में हमारे लिए हुआ करता था म्यूजिक। बिकॉज ये भौपू का बजना मतलब गली में आइसक्रीम वाले भैया आए भाई अपनी पूरी साइकिल लेकर, कार्ट लेकर, और हम सारे बच्चे भागते हुए नीचे जाते थे कि आइसक्रीम वाले भैया आ गए, आइसक्रीम वाले भैया आ गए। एक सर्टेन टाइम हुआ करता था उनके आने का, और उसी टाइम के आसपास हम इंतजार करते थे कि ये आवाज अब सुनाई दे, ये आवाज तब सुनाई दे। और जैसे ही ये आवाज सुनाई देती थी, हाथ में अपने 2 रुपए लिए और नीचे की तरफ जो स्पीड से सारे बच्चे भागा करते थे, और फिर भीड़ लग जाती थी उनकी कार्ट के आगे पीछे। आइसक्रीम वाले भैया की साइकिल वाली गाड़ी का भोपू हो या फिर कुल्फी वाले भैया की घंटी, ये दोनों ही आवाजें ना ठंडक का एहसास थी। गर्मियों की छुट्टियों में ना ये आवाजें सिर्फ आवाज नहीं, दिल को तरावट देता हुआ एहसास थी। याद है आपको गर्मियों की छुट्टियों की वो आइसक्रीम और कुल्फिया? You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: लता जी और उदित नारायण की आवाज में जतिन ललित का कंपोज किया गया और आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ ये गाना फ्रॉम द फिल्म मोहब्बतें इस कैसेट के साइड बी का चौथा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: हमको हमी से चुरा लो, ओए होए, ये गाना बड़ा सूदिंग लगता है यार मुझे। इसका म्यूजिक भी इट्स सो कामिंग कि जब भी इस गाने को मैं सुनती हूँ ना, पता नहीं क्यों, कहीं पर भी हो, मतलब यू नो, जोश भरा माहौल हो, टेंशन भरा माहौल हो, बस इस गाने को सुन लो, आपका जो दिमाग है वो अपने आप उसके केमिकल्स जो है उसका लोचा खत्म हो जाएगा, वो काम डाउन हो जाएगा। बेबी काम डाउन गाने की जरूरत नहीं है, इस गाने को सुन लेना ही वर्क्स लाइक थेरेपी। और इस गाने को पिक्चराइजेशन भी बड़ा प्यारा लगता है यार, चार लव स्टोरीज साइमल्टेनियसली चलती हुई इस गाने के अंदर नजर आ रही होती है। लेकिन इस गाने के ये जो बोल हैं, आनंद बख्शी साहब ने भी क्या बोल लिखे हैं वाकई में, इतनी सारी चीजें हैं ना इस गाने के बारे में जो मुझे बहुत पसंद आती हैं। लेकिन मैं हाईलाइट करती हूँ इस बात पर जहाँ उन्होंने इतनी खूबसूरत अदा बताई है कि हम जुल्फें तो बिखरा दें दिन में रात ना हो जाए, हम आंचल तो लहरा दें पर बरसात ना हो जाए, और फिर प्यार की हदों को पार करती हुई ये लाइनें आती हैं कि होने दो बरसातें, करनी है कुछ बातें, पास आओ गले से लगा लो। इस गाने में कूट कूट के रोमांस भरा हुआ है, मतलब जो लड़की की लाइंस हैं वो भी इतनी रोमांटिक है और जो बंदे की लाइंस हैं वो भी इतनी रोमांटिक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो रोमांटिक और रोमांटिक दोनों ही तरफ से चल रहा है ना मामला, कहीं पर भी ये क्लैश नहीं है कि लड़का जो है वो ज्यादा रोमांस की बातें कर रहा है और लड़की जो है वो हिचकिचा रही है, अटपटा रही है, छटपटा रही है और बात नहीं करना चाह रही है। नहीं यार, आग दोनों तरफ बराबर की लगी है वाला गाना है ये। और मेरी बात खत्म करने से पहले ना ये दो लाइंस और मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगी गाने की, कि लोग तो वैसे कहते हैं ये कर जाते हैं, जैसे तुम पे मरते हैं हम मर जाएंगे, ये सब कहते हैं हम कर जाएंगे। ऐसे कितने लोग मिलते हैं यार लाइफ में जो ऐसी बातें करते नहीं कर जाते हैं। चलो जी, जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans with Charu, only on

0: डिंपल कपाड़िया को बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का शौक था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और उनके इस ड्रीम को सपोर्ट किया उनकी फैमिली ने, खासकर उनके फादर ने। वो लोग ऑलरेडी बॉम्बे में रहते थे, उनका एक सोशल सर्कल भी था अच्छा खासा। तो डिंपल कपाड़िया के फादर ने ऐसी सोशल गैदरिंग्स में जाना शुरू कर दिया जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते थे। आपको पता है डिंपल कपाड़िया को जो पहली फिल्म ऑफर हुई थी वो थी 1970 की गुड्डी, वही जिसमें जया बच्चन जी थी। लेकिन किसी वजह से डिंपल ये फिल्म नहीं कर पाई। लेकिन वो कहते हैं ना, कई बार आप जो सोचते हो वो नहीं होता, क्योंकि डेस्टिनी का कोई और ही प्लान होता है। तो डिंपल कपाड़िया के एक फैमिली फ्रेंड थे जो राज कपूर के भी फैमिली फ्रेंड थे। तो जब वो बॉबी के लिए नई एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे, उन्हें डिंपल कपाड़िया के बारे में पता चला, उनका ऑडिशन स्क्रीन टेस्ट वगैरह हुआ और उन्हें बॉबी फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। तब वो सिर्फ 14 ईयर ओल्ड थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

आपको पता है आज भी पोल्का डॉट्स प्रिंट वाली ड्रेसेस को बॉबी प्रिंट ड्रेसेस कहा जाता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1973 की फिल्म बॉबी में डिंपल कपाड़िया ने वो जो पोल्का डॉट्स प्रिंट वाला व्हाइट कलर का टॉप पहना था, ये फैशन ट्रेंड वहां से शुरू हुआ था। इस फिल्म के बाद डिंपल कपाड़िया वाज सच अ सेंसेशन, उनको इतने सारे फिल्म ऑफर्स आए, लेकिन अपने सक्सेस का उन्होंने कोई फायदा नहीं उठाया क्योंकि फिल्म रिलीज होने के 6 महीने पहले ही वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी। सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी कर चुकी थी। राजेश खन्ना साहब चाहते थे कि उनकी वाइफ हाउसवाइफ बन के रहे एंड डिंपल कपाड़िया ने वैसा ही किया। कुछ इंटरव्यूज में हालांकि बाद में उन्होंने ये कहा कि शी वाज टू यंग टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, कि बॉबी फिल्म करना कितनी बड़ी बात उनके करियर के लिए हो सकती है, वो आगे क्या क्या कर सकती हैं। वेल, प्यार में अक्सर लोग कई बार इस तरह के डिसीजंस ले लेते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले। एनीवे, अभी हम क्या करेंगे, हम गाना सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

Energy. It's hot. पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

सुपरस्टार राजेश खन्ना और राज कपूर की नई हीरोइन डिंपल कपाड़िया ने मार्च 1973 में अचानक से शादी करके फिल्म इंडस्ट्री और पब्लिक दोनों को शॉक दे दिया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1971 में जब डिंपल कपाड़िया को बॉबी फिल्म के लिए साइन किया गया तो वो काफी पॉपुलर हो गई और उनको इवेंट्स वगैरह में भी इन्वाइट किया जाने लगा। ऐसे ही एक इवेंट में राजेश खन्ना भी इनवाइटेड थे। दोनों ने काफी टाइम साथ में स्पेंड किया, प्यार हो गया, शादी हो गई। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि डिंपल कपाड़िया इतनी यंग थी उस टाइम पे, 16 साल की, उनको राजेश खन्ना पे क्रश था, वो उनकी फैन थी, उन फीलिंग्स को उन्होंने प्यार समझ लिया। इधर राजेश खन्ना हु वाज 30 ईयर ओल्ड देन, वो अंजू महेंद्रू जी के साथ अपने 7 साल के लिव इन रिलेशनशिप और ब्रेकअप के बाद शायद रीबाउंड वाले सिचुएशन में थे। डिंपल जी ने एक बार एक इंटरव्यू में शेयर भी किया था कि जब वो राजेश खन्ना जी के घर में एंटर हुई उनको ऐसा लगा कि एक रॉन्ग डिसीजन था, और ऐसा ही था क्योंकि उनकी जो मैरिज थी वो एक हैप्पी मैरिज नहीं थी। 1982 में दोनों अलग हो गए। उसके बाद डिंपल जी ने अपने करियर की वापस से शुरुआत की। 83-84 में भी उनकी कुछ फिल्में आई, लेकिन 1985 की फिल्म सागर को उनकी कमबैक फिल्म कहा जाता है क्योंकि ये फिल्म बहुत हिट भी हुई थी। इस फिल्म के लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

Mirchi. It's hot. Purani Jeans. Purani Jeans. With Charu. Only on

डिंपल कपाड़िया का बचपन से एक्ट्रेस बनने का सपना था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, जो पूरा भी हुआ। बॉबी जैसी फिल्म से उनका डेब्यू हुआ भाई, उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, वो इतनी पॉपुलर हो गई। लेकिन फिल्म रिलीज होने के पहले ही उनको प्यार हो गया था, शादी भी हो गई। उनके हस्बैंड राजेश खन्ना चाहते थे कि वो हाउसवाइफ बनकर रहे, डिंपल कपाड़िया ने भी यही अपना डिसीजन बना लिया, वो उनकी चॉइस थी उस टाइम पे। फिर इस शादी से जब वो बाहर आई 80s में, उन्होंने अपने करियर की सेकंड इनिंग्स की शुरुआत की। 1985 की सागर फिल्म को उनकी कमबैक फिल्म कहा जाता है। इस फिल्म में उनका जिस तरह का रोल था ग्लैमरस, उनको उसी तरह के फिर रोल्स मिलने लग गए। लेकिन डिंपल कपाड़िया कुछ डिफरेंट करना चाह रही थी, जो 80s के डेकेड में थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि तब मल्टी स्टार फिल्में ज्यादा आ रही थी या वायलेंट फिल्म ज्यादा आ रही थी। तब भी उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में की जिसमें शी स्टूड आउट, फिल्म्स लाइक जख्मी औरत या काश। और फिर 90s तक आते आते तो उन्होंने काफी ऑफ बीट आर्ट फिल्म्स, जिन्हें कहा जाता है उस तरह की फिल्में की, जैसे दृष्टि, रुदाली, लेकिन। और मैंने डिंपल कपाड़िया को जिस गाने में सबसे पहले आई थिंक देखा था, एंड आई वॉज वंडरिंग कि भाई इतनी सुंदर औरत ये कौन है, वो गाना हम यहाँ पर सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

मिर्ची इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: आपको पता है गाइड फिल्म पहले देवानंद के भाई विजय आनंद की जगह डायरेक्टर राज खोसला डायरेक्ट करने वाले थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ एक खूबसूरत वजह से। वो खूबसूरत वजह थी वहीदा रहमान जी। सुनिए वहीदा जी ने एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था इस बारे में।
1: देव ने मुझे वो नॉवल भेजी दी गाइड आर के नारायण की, तो हिंदी वर्जन के लिए राज खोसला डायरेक्ट करे। मैंने कहा ओ तो क्यों क्या हुआ? मैंने कहा आपको मालूम है देव, 16 साल के सेट पे मेरे उनकी थोड़ी झड़प सी हो गई थी, तो बहुत बहुत नाराज हुए। फिर उन्होंने भी कहा योर फिनिश, दिस इज योर लास्ट मूवी एंड आई विल नेवर वर्क विथ यू, डा डा डा डा डा डा। कट टू गाइड। मैंने कहा देव आपको मालूम है ना, मैं अरे छोड़ो यार पुरानी बात है, इज अ नाइस मैन। उन्होंने कहा दैट इज अ नाइस मैन, वेरी लवेबल, वेरी फ्रेंडली इन एवरीथिंग। देव कहने गए वहीदा ये कुछ कम नहीं हो, तुम्हारा ईगो बहुत है। मैंने कहा ये ईगो की बात नहीं, उसूल की बात है।
0: ईगो नहीं उसूल, यही तो प्यारी बातें पुराने लोगों की। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आप अंताक्षरी खेल रहे हो या फ्रेंड्स के साथ बैठ के जैम सेशंस हो रहा हो, म्यूजिशियंस बैठे हों और ये वाला गाना प्ले ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कलाकार फिल्म का नीले नीले अंबर पर मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। कल्याण जी आनंद जी का कॉम्पोजिशन, इसे लिखा है इंदिवर एंड मनोज कुमार ने एंड गाया है किशोर कुमार ने। और इसका जो पर्टिकुलर गिटार पीस है ना, जो बहुत पॉपुलर है, ये प्ले किया है बहुत ही ब्रिलियंट म्यूजिशियन सुनील कौशिक साहब ने, जिन्होंने बहुत से गानों में गिटार पीसेस प्ले किए हैं। इन्होंने 90s की बहुत सारी फिल्मों का बैकग्राउंड स्कोर दिया है एंड बहुत सारे टेलीविजन शोज के म्यूजिक में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंक्लूडिंग छोटा भीम।
1: भीम भीम भीम छोटा भीम भीम भीम।
0: सो हैट्स ऑफ टू सुनील कौशिक साहब। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu, इस नाम से मिल जाऊंगी। सुनते रहिए मिर्ची।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: शंकर जयकिशन की कॉम्पोजिशन, हसरत जयपुरी साहब का लिखा हुआ ये गाना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची। और हसरत जयपुरी साहब ना 1940 में बॉम्बे आए थे और पहला काम जो उन्होंने किया था शहर में आके वो बस कंडक्टर का काम था, जिसका उनको महीने का 11 रुपया मिलता था। और क्योंकि वो शायर भी थे तो मुशायरों में भी जाते थे। ऐसे एक मुशायरे में पृथ्वीराज कपूर साहब ने उनको नोटिस किया और रेकमेंड किया अपने बेटे राज कपूर को, जो उस टाइम एक म्यूजिकल लव स्टोरी बना रहे थे, 1949 की फिल्म बरसात। तो मामला डन हो गया। म्यूजिक कंपोजर्स थे शंकर जयकिशन एंड लिरिसिस्ट हसरत जयपुरी साहब, और यहाँ से शुरुआत हुई इनकी लॉन्ग टर्म एसोसिएशन की। तो इसी तिकड़ी का एक और गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देख

0: Mirchi. It's hot. पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाइयों और बहनों, अरे मदगन भाई छगन भाई, सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओए जर्नल सिंह, ओए जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे.

0: कुड़ी फंस गई।
1: अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आप, मेरी लड़ी है।

ये मस्त गाना है 1973 की फिल्म कहानी किस्मत की का। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसे कंपोज किया है कल्याण जी आनंद जी ने, लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और गाया है किशोर कुमार ने। और इसमें वो जो फीमेल वोकल्स है ना, क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। ये कहा है उषा टिमोथी नाम की सिंगर ने। जी, इन्होंने बहुत सारे हिंदी फिल्मी गाने गाए हैं। इनके गाने बहुत हिट नहीं हुए तो भी इन्होंने काफी गाने गाए हैं। और इस पर्टिकुलर गाने के लिए ना उन्होंने क्रेडिट्स लेने से मना कर दिया कि एक दो बार ऐसे बोला ही तो है, इसका क्या क्रेडिट लेना। ये होती है अच्छे लोगों की निशानी। और आप भी अभी अच्छा सा काम कर दो, मुस्कान को ले जाओ कान तक और कान रखो मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, साथ ही रखना छोड़ना नहीं।

1983 की फिल्म रजिया सुल्तान में जब कमाल अमरोही साहब ने धर्मेंद्र को कास्ट किया था तो काफी लोग हैरान हो गए थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बिकॉज ऐसा सुनने में आता है कि 1960s में कमाल अमरोही जी की वाइफ मीना कुमारी जी और धर्मेंद्र के बीच में एक रिलेशनशिप था और धर्मेंद्र ने मीना कुमारी जी को ये भी सजेस्ट किया कि वो कमाल अमरोही को छोड़ दें। हालांकि कमाल अमरोही साहब ने ये क्लियर किया था कि उनके और मीना कुमारी जी के बीच में जो भी हुआ या जो भी डिफरेंसेस थे उसके लिए उन्होंने कभी धर्मेंद्र को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि कमाल अमरोही साहब ने सॉर्ट ऑफ अपना रिवेंज लिया थोड़ा सा, बिकॉज इस फिल्म में धर्मेंद्र को एक अफ्रीकन स्लेव दिखाया गया और इस वजह से उनकी स्किन बहुत डार्क कर दी गई। बाद में ये भी बातें हुई कि ये झूठा एलिगेशन था, ऐसा कुछ नहीं था, ये रोल की डिमांड थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

0: जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
2: मिर्ची
0: इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स
0: विद चारों ओनली ऑन मिर्ची।
3: अरे एक फरियादी हाजिर है

पुली फिल्म के सेट पे जब अमिताभ बच्चन साहब का मेजर एक्सीडेंट हुआ था, उस वजह से काफी फिल्में बंद हो गई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ऐसी एक फिल्म थी जिसका नाम था औकात। ये बनाने वाले थे ऋषिकेश मुखर्जी, डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी एंड प्रोड्यूसर देवेश घोष। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ होने वाली थी जया प्रदा एंड अनीता राज, लेकिन क्योंकि बच्चन साहब का एक्सीडेंट हो गया ये फिल्म कैंसिल कर दी गई। इसी टीम की दो और फिल्में बन चुकी थी डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर की, बेमिसाल एंड जुर्माना। एंड आई थिंक जुर्माना फिल्म वॉज द फर्स्ट टाइम अमिताभ बच्चन साहब ने ऐसे प्ले बॉय टाइप का रोल प्ले किया था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मैं आपको मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

Mirchi. It's hot. Purani Jeans. Purani Jeans. With Charu. Only on

0: नूरी फिल्म का गाना हमने सुना और इसके बाद हम सुनेंगे बॉबी फिल्म का गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और इन फिल्मों के नाम पता है मैंने 90s के कुछ गानों के थ्रू सुने थे। 1995 की एक फिल्म थी हलचल, जिसका गाना था सावन का महीना, शादी बिना मुश्किल है जीना, जूली, नूरी, बॉबी या फिर चलेगी अपनी गली की मीना। और एक और फिल्म थी 1991 की पत्थर के फूल, सलमान खान की, जिसमें गाना था कभी तू छलिया लगता है। उसकी लाइन्स थी कभी तू नूरी लगती है, कभी तू जूली लगती है, कभी तू चांदनी लगती है, कभी तू बॉबी लगती है। तो नूरी गई थी, अभी बॉबी आ गई है। पुरानी जीन्स पर मैं यानी कि चारू वापस आती हूँ थोड़ी देर के बाद। सुनते रहिए मिर्ची।
1: बाहर

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

भाई क्या गजल पढ़ी मैंने, क्या गजल पढ़ी, मजा आ गया। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो वसीम बरेलवी साहब की गजल है, ये है तो सबके लिए हो ये जिद हमारी है, इस एक बात पे दुनिया से जंग जारी है, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की अब के नहीं हौसलों की बारी है, मैं खतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूँ, मुझे बचाना समुंदर की जिम्मेदारी है, कोई बताए ये उसके गुरूरे बेजा को, गुरूरे बेजा मतलब बहुत ज्यादा घमंड, कोई बताए ये उसके गुरूरे बेजा को, वो जंग मैंने लड़ी ही नहीं जो हारी है, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: सुनिए
2: कहिए कहिए,
1: सुनिए सुनिए
2: कहिए कहिए ना,

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अंग्रेज चले गए, सॉरी छोड़ गए।
2: श्रुति, श्रुति,
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, और मैंने ये वाली कहावत ना अपनी माँ से और अपने पापा से कई बार सुनी है, क्योंकि जानबूझ के जब कोई गलती करते हैं आप, उसके बाद सॉरी बोल देते हैं, तो फिर उसका कोई मतलब तो होता नहीं। एंड यही वाली फीलिंग ना मुझे आजकल के कॉन्टेंट क्रिएटर्स, कमेडियंस, इन लोगों की तरफ से आ रहा है। अब वो समय रायना के लेटेंट शो का पूरा फियास्को हो, या फिर अभी प्रणित जो ट्रोल किए जा रहे हैं फॉर 370 रुपए वसूलने वाली बात, अभी तक आपको ये चीज पता नहीं चली है, देन यू आर एक्चुअली लिविंग अंडर अ रॉक। बिकॉज देयर इज दिस कॉमेडियन प्रणित, जिसने अपने शो पे एक बंदे से कॉन्वर्सेशन करते हुए इस तरीके का ओवरव्यू दिया कि भाई उसकी कहानी में लड़की जो है वो एक कमोडिटी है, और 370 रुपए की बिरयानी खिलाने के एवज में लड़का कैन एक्चुअली मोलेस्ट हर, वो ऐसे थोड़ी जाने देगा उसको। एंड ऑनेस्टली ये पहली बार नहीं हो रहा है हमारे आसपास, कंटेंट के नाम पे, कॉमेडी के नाम पे, मजाक के नाम पे ऐसी चीजें काफी टाइम से होती आ रही हैं। एंड यस, द मच लव्ड जाकिर खान आल्सो कम्स अंडर द स्क्रूटनी, क्योंकि अगर आप उनके पहले के परफॉर्मेंसेस देखेंगे, उनके शोज देखेंगे, तो उन्होंने भी इस तरीके की बातें कई दफा की हैं। सो या, इट्स हाई टाइम दैट मेरे और आपके जैसे लोग अपने आइडियल सिलेक्ट करने में थोड़ा दिमाग लगाएं, बाकी तो समझदार को इशारा काफी होता है यार। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: एक्टिंग इतनी कमाल कि मेन लीड से ज्यादा फुटेज इनको मिला।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हेलो जी, हाय बाबू मोशाय। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हमें बहुत सारी ऐसी फिल्में मिली हैं जिसमें अलग अलग किरदार नजर आते हैं, कुछ मेन लीड्स होते हैं और कुछ साइड कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे पांच फिल्मों को डिस्कस करूंगी जिनके साइड कैरेक्टर्स ने हमारे दिल में मेन लीड से ज्यादा जगह बना ली अपने परफॉर्मेंस के दम पे। तो चलिए लिस्ट की शुरुआत करते हैं। नंबर वन पे लेट्स टॉक अबाउट हेरा फेरी से बाबूराव गणपतराव आपटे। भाई साहब, ये बाबूराव का स्टाइल है, उठा रे बाबा मेरे को नहीं इन दोनों को उठा ले, ये सारे डायलॉग्स आज भी हर दूसरे इंसान के दिमाग में फिट हैं और हम ऑन अ डेली बेसिस भी अपने सिचुएशंस में इन डायलॉग्स को यूज कर लेते हैं। एंड दैट माई फ्रेंड इज द पावर ऑफ दिस एक्टर, बोले तो परेश रावल, जिन्होंने इस फिल्म में कॉमन मैन के स्ट्रगल्स को बहुत अल्टीमेट तरीके से दिखाया है। उनका अनफिल्टर्ड फ्रस्ट्रेशन हो, लेजेंडरी कॉमिक टाइमिंग हो, या फिर हर बार उनका रॉन्ग नंबर के चलते परेशान होकर सामने वाले को गालियां सुनाना हो, कसम से मेरे हिसाब से तो बाबूराव गणपतराव आपटे के ऊपर एक अलग फिल्म बननी चाहिए। मजे नहीं आएंगे उनकी बैक स्टोरी जानने में। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ और अब से कुछ ही देर में ऐसे ही और चार कैरेक्टर्स की बातें वापस लेकर आऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।